0: हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
0: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivar

0: बड़े नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: अस्मिन् अवसरे श्री शाहः इत्यपि उक्तवान् यत् भारतीय राष्ट्रीय

0: उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज आवश्यकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: The Padma Awards have long celebrated the extraordinary achievements of individuals across generations. This year's list includes accomplished personalities from fields as diverse as music, cinema, sports, public affairs, medicine, social work, and entrepreneurship.